आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लॉन्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 13,000 करोड़।

धीम तद्धीम तकथिमि तकछनु तकथिमि तकछनु ताम तद्धीम तद्धीम तकथिमि तकछनु तकथिमि तकछनु ताम धीम तोम नम तरगड़तुम तरगड़तुम तरगड़तुम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के सहयोग से यह यात्रा जारी रहेगी। इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वड़ा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती हुई चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में ये समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र लोगों को अवैध हिरासत में न लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा। भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल अकोइजम की सेवाएं समाप्त कर दी थी। नई दिल्ली में पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए और सांसद के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और तत्काल निलंबित करने की मांग की। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पुष्टि की है कि तेल टैंकर MTGEM पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 22 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ये घटना रास अल खैमा तट के पास जहाज में आग लगने के बाद हुई। सऊदी अरब के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के

हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। मृतकों में 4 सऊदी और 8 विदेशी नागरिक हैं। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। भारत ने संप्रभुता की रक्षा के लिए सऊदी अरब की जनता और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की। नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में आज सवेरे अचानक आई बाढ़ से अनेक पुल और घर बह गए। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। लगभग 50 लोगों को बचाया गया है और 10 लोग अब भी लापता हैं। खोज और बचाव अभियान जारी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से इंदौर में खेला जाएगा। 5 मैच की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं। अनमोल खरब ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। अनमोल ने फाइनल में आकर्षी कश्यप को हराया। उधर मिस्र में उदयवीर सिद्धू ने निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया। लद्दाख पुलिस बाइक रैली टीम गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हो गई है। रैली का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, एकजुटता और नशा मुक्त भारत को बढ़ावा देना है। भारतीय नौसेना का जहाज सह्याद्री अभ्यास इंद्र 2026 में शामिल होने के लिए रूस के व्लादिवोस्तोक पहुंच गया है। ये द्विपक्षीय अभ्यास 13 से 18 अक्टूबर तक चलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कई जाने माने कलाकारों के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपके संगीत कार्यक्रम आए दिन आकाशवाणी कलबुर्गी तथा दूरदर्शन केंद्र चंदन बेंगलुरु से प्रसारित होते रहते हैं। आज की इस अखिल भारतीय संगीत सभा में पंडित जडेश हुगार जी प्रस्तुत कर रहे हैं तबला वादन तीन ताल में। हारमोनियम लहरा संगत कर रहे हैं श्री रेवैया वस्त्रदमठ।
1: दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुडे वी प्रेजेंट तबला रिसाइटल बाय पंडित जडेश होगार। हैविंग इम्बाइब्ड म्यूजिकल इंस्टिंक्ट्स फ्रॉम हिज फादर श्री भगवंतप्पा होगार, अ वेल नोन वोकलिस्ट एंड तबला आर्टिस्ट ऑफ कल्याण कर्नाटक रीजन, जडेश इनकल्केटेड अ सेंस ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। एट द टेंडर एज ऑफ 8 he started learning tabla under his father's guidance. After that, it was the turn of his uncle, Pandit Satlingappa Desai Kallur, a top grade tabla artist of Akashwani Dharwad, to impart advanced training in tabla to Jadesh. Belonging to Purab, Farukabad and Azrat Gharana, Jadesh has also achieved the style of Delhi Gharana. A postgraduate in music from Karnataka University Dharwad, Jadesh has achieved many top grades in classical music at a very young age, enthralling audience and connoisseurs all around India and abroad with repertoire of his recitals. Incorporating various styles of performances, Jadesh has shared stage with many eminent and senior musicians. He has given programs in France and Switzerland also. Tonight, Pandit Jadesh Hogar will begin his performance of tabla solo in Teen Taal. Harmonium Lahira is provided by Sri Revaya Vasudmat.

0: तबला वादन में तीन ताल अब तक सुन रहे थे। अब सुनिए पंडित जडेश हुगार जी से तबला वादन में रूपक ताल। हारमोनियम लहरा संगत कर रहे हैं श्री रेवैया वस्त्रद मठ।
1: यू जस्ट हर्ड तबला सोलो बाई पंडित जडेश हुगार इन तीन ताल। नाउ लिसन टू रूपक ताल।

0: इस रूपक ताल के साथ पंडित जडेश होगार तबला सोलो समापन कर रहे हैं। हारमोनियम लेहरा संगत कर रहे थे श्री रेवैया वस्त्रद मठ। यह कार्यक्रम आकाशवाणी कलबुर्गी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग किया गया था।
1: विथ रूपक ताल पंडित जडेश होगार कंक्लूड्स हिज तबला रिसाइटल इन टुडेज रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। हारमोनियम लहरा वॉज प्रोवाइडेड बाय श्री रेवैया वस्त्रद मठ। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी कलबुर्गी।
2: ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం. మరికొద్ది క్షణాల్లో హిందీలో వార్తా ప్రసారం, అనంతరం ఆంగ్లంలో వార్తా ప్రసారం ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
2: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
1: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
2: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में

0: शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रोत्सव आज पूरे देश में धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव के साथ शुरू हो गया। देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रमुख मंदिरों में पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सऊदी अरब में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में आज सुबह अचानक आई बाढ़ से अनेक घर और पुल बह गए। किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi has said India's progress draws strength from its rich cultural heritage, scientific achievements and modern infrastructure. The Prime Minister was speaking after inaugurating and laying foundation stones of development projects worth over 13,000 crore rupees across Tamil Nadu at an event held at IIT Madras today. The projects span road and rail transport, port infrastructure, petroleum and scientific research.
2: This is a historic day for Tamil Nadu. Today's program involves projects worth 13,000 crore rupees. We are inaugurating many completed projects and laying foundations for new ones. Some will make daily travel easier. Others will strengthen industry and trade. Together, they will create jobs for young people across Tamil Nadu. I congratulate the people of the state on this occasion.
1: Earlier in the day, Mr. Modi inaugurated the Poonamalli Vadapalani stretch of Phase 2 of the Chennai Metro Rail project, built at a cost of around 4,900 crore rupees. The Prime Minister and Chief Minister C. Joseph Vijay jointly flagged off the new metro services and travelled on the train. Prime Minister Narendra Modi also attended Golden Jubilee celebrations of Jai Gopal Garudiya Hindu Vidyalaya in Chennai today. Addressing the students, the Prime Minister said the world is looking for solutions to emerging challenges and expressed confidence that India's youth have the talent and potential to provide them. The Supreme Court today directed authorities to ensure that people gathering peacefully are not illegally detained and that the free movement of people is allowed, subject to traffic regulations. It also called for a review of barricading arrangements in Delhi and directed the centre to ensure that metro services operate according to their normal schedule and that internet services remain uninterrupted, subject to law and order requirements. It further directed that lawyers must not be obstructed from discharging their professional duties. Issuing notice to the centre on a plea seeking initiation of contempt proceedings against authorities over alleged violations of